0: टीज, समोसा, वड़ा पाव, स्प्रिंग रोल्स, मैंगो लस्सी एंड माय फेवरेट समोसा चाट एंड भेल.
1: Navigators Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे.
3: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट

सतगुरु होए दयाल त सरदा पूरिए, सतगुरु होए दयाल न कब हूं चूरिए, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल।

0: क्या बात है, 905-673-3337 905-673-3337। वैसे तो जे ड्यूट्स गीत की गल करिए, ड्यूट्स सोंग्स की गल करिए, यार सुरजीत भुल्लर ते सुदेश कुमारी की भी जोड़ी बहुत कमाल दी रही है। मैं कहना कि जिन्हें भी गीत आए ते कमाल सीगे। अपने जे दूजे बाई जी की गल करिए, चमकीला ते अमरजोत, यार ये भी कमाल सीगे। सो 905-673-3337 905-673-3337 ड्यूट जोड़ी थोड़ी सब तो पसंदीदा केड़ी सी, ते केड़ा ऐसा सिंगर जिहड़ा थोनों लगता कि अज तक जिन्हें ड्यूट गाने गाए नहीं है। जी वीर सत श्री अकाल, तुसी ऑनर गुरसेवक गिल जी।
1: ड्यूटी
0: होंगे मोहम्मद सदीक साडे भाई सदीक साहब साडे शहर तो ने जैतो तो अमेजिंग वाकई क्या बात आ। सो सदीक साहब ते बीबी अच्छा सदीक साहब वैसे दो तीन इन्हां दे नाल इन्हां एक होर गायिका होंदी सी इस तो बिना भी। सो बीबी रणजीत कौर ते मोहम्मद सदीक नूं बहुत प्रसिद्धि मिली सी किसी टाइम दे विच। सो तुहाडे जहन दे विच कोई होर ड्यूट जोड़ी आ रही है, तुहानूं लगदा कि बई इन्हां ने बंब कराती सी? मैनूं मैसेज आया बाई जी कहिंदे कि दीदार संधु ते सहेर लता, आई डोंट नो कि ए बाई जी सहेर लता मैं तां सुणिया नहीं, अच्छा हैगा कोई सहेर लता? 905-673-3337 चलो एनीवे तुहाडी सब तो पसंदीदा ड्यूट जोड़ी केड़ी आ, ते थानू की लगता अज तक किसी ने ऐसा सिंगर केड़ा जां ऐसी गायिका केड़ी जिन्हें ड्यूट ही नहीं गाया? यार है ना कमाल की गल, सोची पाने वाली गल आ भी किसी ने ड्यूट गाया ही ना हो। सो 905-673-3337 मॉडर्न ड्यूट सुनाइए थानू। चलो

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेण ले आज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000

0: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज अहकां दी सौगात मंदा साझा विरसा
1: सोमवार तक शुक्रवार 5:30 AM ते 4:15 AM तो 5 बजे तक
2: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
0: साझा विरसा दी टीम नू 6478352594 8355252

0: 905-799-8877 sofastudio.ca। थैंक यू जी।
1: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992। फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशन टू सर्व यू। 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 9057900560 6 Marconi Court Bolton 9059519394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
2: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो करे नहीं बन पाउना।
3: Hi guys, enjoy करो तंदूरी बॉयज। वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
2: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पार्टी जागो अते वेडिंग ले अज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200। सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
4: पिछले 18 सालों तो मॉर्गेज दिया सेवावां देंदे आ रहे अकाल मॉर्गेजेस इंक नाल कम कर दे। दविंदर पवार।
5: फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज होम इक्विटी बिजनेस लोन डेट कंसोलिडेशन रीफाइनेंस रेंट टू ओनली कॉल करो दविंदर पवार नू 6479888731 647-988-7831।
4: जे नहीं होना खज्जल खुआर ता कॉल करो
5: दविंदर पवार।
4: जेकर एक बार इना तो अड़ी फाइल वेख के हाँ कह देती ता अपने भा देते हमेशा खरे उतर देहान। लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन एंड ऑपरेटेड।
6: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475542594 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

अलावा होर व्यक्ति ने हवाई जहाज का सफर करवाया। 1982 च इंडिया रेडियो अगे कटता से, पता नहीं की है पूरी खबर नहीं पता की है। चलो गुड मॉर्निंग वीर जी, कहते थैंक यू दलवीर भाई, थैंक यू सो मच। 33 33 73 33 73 तो गगन भाई जी का मैसेज है, कहते गुड मॉर्निंग भाई वीर जी, गुड वॉइस हैव ए गुड डे। गगन भाई जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पिंचू भाई जी कहते ओके गुड नाइट जी, गुड नाइट थोनों भी। 71 72 तो राजभा जी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल थोनों भी प्यार भरी। 85 20 तो 85 20 तो रेशम सिंह जी, रेशम भाई जी थैंक यू सो मच, थोड़ा मैं देखा मैसेज कल आया हो, कल तो परसों, तो फिर उस पेल 2022 के मैसेज पाया मैं, तकरीबन 2 साल बाद थोड़ी गल हुई है मैं मैसेज जरिए। थैंक यू 10 37 तो कंग साहब का भी मैसेज है गुड मॉर्निंग का, थैंक यू सर। तो साढ़े रेंडी बाई जी का भी मैसेज आ गुड मॉर्निंग जी, माफी जी मिस योर कॉल, कल मैंने कॉल की सी कम से मैं, तो फिर मैं इन्होंने मेरी कॉल नहीं चकी, तो हूँ सुनते प्रोग्राम। रेंडी बाई जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधरों आ जाओ जी लखविंदर मुल्तानी साहब, सुनते प्रोग्राम गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते, थैंक यू भाजी। 4467 तो हरमन भाजी कहते सत श्रीकाल जी वीर जी, प्रोग्राम वेरी गुड, आवाज़ परफेक्ट, थैंक यू। थोड़े भेजे हुए मैसेज हर वक्त बढ़ी दिया सवेरे रोज़, क्योंकि मेरा अद्धा काम मुक जाता चीज़ों। हरमिंदर लक्की भाजी भी गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते, थैंक यू सर। चलो आप जोड़ते हैं हम परमिंदर करते हैं उन्होंने गल्लां बातें, तो थोड़ा कोई विचार आ कोई संदेशा तो मैसेज का जरिए पाँना बहुत वधिया गल आ। तो जे तुसीं कॉल करनी आ तो फिर तुसीं जरूरी कोई हैगी एमरजेंसी तो जरूर जरूर जरूर जरूर कॉल करो, फिर ना संकोच करो। तो फिर मैं जब तक थोड़ा किलोमीटर मिलावा थोड़े जे किलोमीटर की कहते हैं अज के कितने के तक आप किलोमीटर भजा सकते हैं गड्डिया गुड्डिया, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे मैं लगता। चलो तुहानू किलोमीटर सुनाउना मैं, सुनो की कहिंदा।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
3: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है। ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो।

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
2: इंश्योरेंस किसको करवांदा यार?
3: कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू।

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: SNS Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 6475041557। टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100। तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है, तुसी अगर करे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करोना, वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो।

0: सो पिज्जा शेफ का नंबर है 647-547-4200, 647-547 जो 5242 ट्रिपल लैंडस्केपिंग इंटरलॉकिंग द टोरंटो च किसी ने कोई काम करवाना, कोई प्लाजे की मैनेजमेंट करवानी है लैंडस्केपिंग की, ट्रिपल ए सर्टिफाइड कंपनी है, मल्टीपल प्लाजा से मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ नू जिहड़ी यह मैनेज करती है। तुसीं अपने घर इंटरलॉकिंग या घर का काम करवाना 647-784-1213 647-784-1213 ते तुसीं कॉल करनी है। एजड लाइसेंस ड्राइवर चाहिए आ, 8 to 12,000 बनूगा डिपेंड ऑन माइलेज, 25,000 माइल पर मंथ तो मिलेगी, 25,000 एंटीम 25,000 माइल्स चंगे रेट ने क्योंकि कंपनियां बहुत वड्डियां ने, ते जड़ी बाइजन ते एक होर कंपनी है, दोनों वड्डियां कंपनीज वास्ते तुसीं काम करना है। एक नंबर ते कॉल करनी है, एजड लाइसेंस 2 ईयर एक्सपीरियंस क्लीन रैकेट, यूएस और कैनेडा दोनों जगह जाना पैना, 647-831-4930 647-831-4930 कॉल करनी है। नाल नाल ट्रू नॉर्थ वाले का नंबर नोट कर लो, जिन्हें मेरे भरा सुनते पैने कॉन्क्रीट के बिजनेस चा, या तुसी प्राइवेटली ड्राइवे पटाना है, या ग्रैवल पाउनी है, फार्म हाउस आ तुहाडा, पार्किंग लॉट आ, या तुहाडा कोई ग्राउंड इदा दा ग्रैवल पाउनी है, ट्रू नॉर्थ टॉप की कंपनी है, कैनेडियन डेयरी ते इन्हां दा जिहड़ा यार्ड आ, और जिन्नी भी वेस्ट है तुहाडी कॉन्क्रीट की या तुहाडी ड्राइवे की या लुक की, यह सारी सटवाउंदे ने, इन्हां कोल यार्ड आ उत्थे सट दो जाके, तो इन्हां कोलों अगर किसी ने ग्रैवल पाउनी है, यार्ड पदरा करवाउणा, या फाउंडेशन का कोई भी काम है किसी का, ट्रू नॉर्थ नूं कॉल करनी है 416-803-0623, या कोई कॉन्ट्रैक्टर मशीना किराए ते करनियां चाहुंदा, जिहड़ियां ड्राइवे पट्टण वाली मशीन आ, मशीनरी रेंट भी करदे आ, डंप ट्रक भी ने, डंपस्टर भी ने, 416-803-0623 416-803-0623 416-803-0623 ते कॉल करनी है। और हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर गैरी गरेवाल यार दे यार, किसी भी तरह की मोटर कार रिपेयर करवानी है, कोई भी इंजन, अमेरिकन, जर्मन, कोरियन, इंडियन, कितने का भी, तुसी हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर नूं कॉल करनी है 905-463-63-63 गलबात कर सकते हो। बाबा बक्तौरा च कॉल कर रहे हो 905-673-33-37, स्टूडियो के नंबर ने 905-673-3337 ते तुसी अपना नाम ते डेट ऑफ बर्थ दस रहे हो, ते अज दे शो नूं नज़ारा लेके आउंदे ने, नज़ारा इंडियन रेस्टो लॉन्च, जिथे पैटियो दे नाल, बार दे नाल, जो डीजे सिस्टम दे नाल, लाइटनिंग दे नाल, ते तुसी कैबिनस बने हुए ने, और एयरपोर्ट वर्गे वॉशरूम बने हुए ने, बड़े वड्डे साफ सुथरे, ते नज़ारा 905-451-2600 905-451-2600 ते कॉल करनी है। स्टूडियो के बच्चे नैक्सट कॉल के उत्ते पहुंच चुके हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हैलो
1: हैलो
0: हाँ जी
1: हाँ जी मेरा हाँ जी की हाल चाल ने सर?
0: चढ़दी कला भाजी, चढ़दी कला।
1: हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है,
0: तुहाडा नाम है जी कुछ?
1: ईशान।
0: ईशान, हाँ जी ईशान, डेट ऑफ बर्थ की है?
1: June 29, 1988।
0: अच्छा, शुरू तो इदा बोलते हौली हौली।
1: हाँ जी,
0: देखो जदा मेरा शो चलता, चौथी टिकट दे रहा पुलिस वाला मेरे सामने खड़ा, डेरी एंड टॉरबम दे कोल, केयरफुल स्पीडिंग नहीं करनी किसी ने, तो ध्यान नाल पुलिस ऑफिसर खड़ा, कोई गड्डी रुकी है उन्हों का भी ख्याल रखना सेफ्टी लिए। तो ईशान कि डेट पर लिया?
1: June 29, 1988।
0: अच्छा, June 29।
1: हाँ जी,
0: की कर रहे हो तुसी राइट नाउ?
1: गैस स्टेशन आया सी।
0: नहीं नहीं, वो तो मैंने पता, मैं घर का काम नहीं पूछा, जिंदगी बशर कर ली, किस प्रोफेशन चो, कोई कारोबार चो?
1: आईटी कंसल्टेंट हूं मैं।
0: आईटी कंसल्टेंट, अच्छा,
1: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट च।
0: तोड़े ते डॉक्टर्स से जॉब्स दे वास्ते इन्होंने एआई यूज करनी शुरू की थी ना?
1: हाँ जी।
0: कल मैं न्यूज दिती सी कि जिहड़े डॉक्टर्स ने उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की है जिस क्या कि लोगों के इलाज कर लगे एआई रीडिंग्स ही ट्रांसक्रिप्ट गलत तैयार कर देती है, मतलब इलाज गलत हो सकता किसी बंदे का, रिस्क है। पर आईटी सैक्टर च इलॉन मस्क वर्गिया ने रोबोट्स तैयार कर दते ने, तत्पर हुए भी कदों

0: जे तुसी फर्स्ट या सेकंड मोर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: आप पंजाबी आ गए
2: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
3: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रेल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री काट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाहर फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर दिया ने रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण दे खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकदी है नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नु फोन करो 647-740-9600 दे कॉल की जा सकती है तुहाडा अपना रेल्टर रेव सिंह
4: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्हां नू प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन दियो साडे अप्रूवल फास्ट ने कवरेज तुहाडी नीड दे मुताबिक है ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकदा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते तुसी मैनू कॉल करो एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विदे छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस
3: A to Z किचन कैबिनेट बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन लक्की भाजी दीआं बणीआं किचन कैबिनेट देखे गुआंढी वी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो
5: इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियां इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808
6: अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
7: कॉल करो 20 साल दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
6: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
8: जी असि आप दे नाल शेयर करेंगे जी शैल गैस स्टेशन ए शैल गैस स्टेशन च मल्टीपल इनकम जनरेटिंग ही गावे एदे च टनल कार वाश ही गए चार कॉइन कार वाश ही गए एच कॉइन लॉन्ड्री की जे एच तीन यूनिट ही गए जेडे रेंटल ने थ्री बेडरूम अपार्टमेंट ही गए टेक आउट रेस्टोरेंट ही गए यू नेम इट ब्यूटीफुल लोकेशन 1.2 एकर लॉट ही है क्वाथरा लेक से एरिया च ही गावे ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ $750,000 ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ 647-988-4449 ਹਸੀਬ ਸ਼ੇਖ 647-988-4449 ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ
9: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਫੋਨਸ ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ ਮੋਰ ਚੋਇਸ
10: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m.

0: 32, 55, 80, 93।
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने,
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते।
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।
4: Donations to the War Amps have a lasting impact on amputees. Today, your support gives them the artificial limbs and resources they need for everyday activities and learning to live with amputation. Having access to our essential programs helps amputees prepare for tomorrow on their road to independence. The War Amps is committed to improving the quality of life for Canadian amputees, but this wouldn't be possible without you. To learn how your donation helps, visit waramps.ca.
5: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
6: सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा दो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ ची डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा कब्बरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार नाल दित्ती होई निशानी वर्गा सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य खट्टे दे लैके रंग तुहाडे रूप।

0: ਓ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਗਈ।
1: ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ?
0: ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ?
1: ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਨਕਾ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Whoa, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
4: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000
5: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557 टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घरां लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है तुसी अगर घरे अपना होम थिएटर होम सिनेमा तैयार करवाना वेरी प्रोफेशनल टीम टेक स्पिरिट 905-621-4100 905-621-4100 ते फोन जरूर करो

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डिया नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1